गुड मॉर्निंग एवरीवन और नमस्ते नमस्कार सीताराम और अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू योर अर्ली मॉर्निंग एडिशन ऑफ शबनम एंड स्पेशली डिजाइंड टू असिस्ट यू विद योर अर्ली मॉर्निंग चोर्स एंड टू पुट यू इन ए पॉजिटिव एंड गुड फ्रेम ऑफ माइंड and to also ignite sparks of spiritual inspiration to you and your loved ones. Aurai bahare ba garunya chand roz dekhlo iska tamasha chand roz aur ai musafir kuchaka samaan kar islami hai basira chand roz. From Trinidad and Tobago, my name is Moeen Mohammed, now extending to you a very warm welcome to join my youthful and brilliant producer, presenter, Richard Aziz.

सस्ता समान सस्ता नहीं, हाई एंड दा समान मिले सस्ता। मैं हां थोड़ा रोहित यसमैन रिट्स फर्नीचर तो, जिथे लग चुकी है विसाखी सेल, जिस च एशली मेड इन कैनेडा फर्नीचर मैटसा ते घर नु सजान वास्ते एक्सेसरीज ते लग्जरी एरिया रग ते लग चुकी है 40-70% ऑफ सेल। जिवे के यसमैन हमेशा ऐलान करता है कि वी डोंट मैच द प्राइस वी बीट इट, सो थोड़े कोल कोई भी फ्लायर हैगा या कोटेड प्राइस साडे कोल रिट्स फर्नीचर ते लेके आओ, असी उस प्राइस नु मैच नहीं बीट ते करांगे, ओदे नाल नाल थोनू वर्ल्ड क्लास सर्विस भी दित्ती जाएगी। रिट्स फर्नीचर 5200 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी एंड 401-905-232 रिट्स 7489 रिट्स फर्नीचर planet.ca। सस्ता सामान सस्ता नहीं, हाई एंड दा सामान।

मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, और वो ही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन और नमस्ते, नमस्कार, सीताराम और अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू योर अर्ली मॉर्निंग एडिशन ऑफ शबनम एंड स्पेशली डिजाइंड टू असिस्ट यू विद योर अर्ली मॉर्निंग चोर्स एंड टू पुट यू इन ए पॉजिटिव एंड गुड फ्रेम ऑफ माइंड एंड टू ऑल्सो इग्नाइट स्पार्क्स ऑफ स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन टू यू एंड योर लव्ड वंस. और ऐ बहारे बाग अरुणिया चंद रोज देख लो इसका तमाशा चंद रोज और ऐ मुसाफिर कूचका सामान कर इस सलामे है बसेरा चंद रोज. From Trinidad and Tobago, my name is Boy Muhammad, now extending to you a very warm welcome to join my youthful and brilliant producer, presenter, Richard Aziz.

0: Taken we culture high. This is shabnamradio.com.
1: युगों से आज तक हर युग में जब जब संगीत का युग आया, जब संगीत में क्रांति आई, आशा दीदी की आवाज ने उन क्रांतियों को हर मोड़ पर एक नया रास्ता दिखाया। तुम ही संगीत की जगह हो, तुम ही संगीत की क्रांति हो, ये सफर जारी रहेगा। दम मारो दम, मिट जाए गम, गम की दवा तो आपकी आवाज है, गम की दवा शराब नहीं।

0: तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी।
1: Promise?

तेरे मेरा भी एक सुंदर साजन था। उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हुआ मेरे पास आता था, गाता था, नाचता था।

0: बोलो
1: चारु चंद्र की चंचल चितवन।
0: शाबाश, आगे आगे।
1: बिन बदरावर से सावन।
0: शाबाश, चलो आगे आगे आगे बढ़ो।
1: चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरावर से सावन।
0: फिर से चलो।
1: चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरावर से सावन।
0: शाबाश, आगे आगे आगे।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।